आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जैसे पहले बाप ने कहा सीकर में स्टॉप। Jack.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: வஜை வாணிக்கு சேவா
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा भी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देख।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारथ सेवा नहीं, कोई ना कोई कमी है सेवा में। इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश निमा, घिरा हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेंगे। चेक करो, सारा दिन सेवा की लेकिन सारे दिन के सेवा के तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच भी जारी चलते रहे, ये नहीं ये ये नहीं ये, और आपके खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी कोई भी है।

0: नेशन दी से कोई बड़ी समस्या से बाहर नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ सिक्या से नहीं। आजकल सिक्या सिवे प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। सिक्या काम नहीं करती, लेकिन सिक्या के साथ शुभ भावना, रहम, दिल ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा ने चोटिल बताई थी, याद है? 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी है, वो किए जिसने वो ड्रिल की है वो हाथ उठाओ, किए किए थोड़ों ने हाथ उठाए, क्यों? तो थोड़ा टाइम किए, बहुत टाइम नहीं किए, तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताए, कम से कम बताए, आज कम से कम 8 बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो तो इस फर्श का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम 8 बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर। देखेंगे नहीं, करनी है, चाहे मिस हो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है, वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते
2: में देखा तो बोल और कदम में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते त्यार है त्या त्यार है। सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करे, संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। तेरे संकल्प का बटन तो है ना, क्यों पाप दाता को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय ये सोचते के बाप दादा साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार निराकार है। बिल्कुल सभी भी छूटिए, छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की कोशिश करो, छूटने की कोशिश। बाप को भी बच्चों पर फीत है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेते हो, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, ब्रह्मांड जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, भी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yo.

Önce

0: गैंगस्टर बनो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Nystagmi. Chamaktiwi. Chamakriya.

beast.

Essa. Yeah.

la musiquiti. Essa sreshtha bhagya. Shit.

0: ASMR. श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्वरेखाएं प्राप्त होती है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा की,

जीवन की अनुभूति करने की, जहां मेहनत है या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? जिस भी समय आपको अनुभव होगा कि जब अनुभव के सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

छू जाता है।

진짜

सदा सने की साख।

0: मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी सने सारा कलप सने ही बना देता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shut up.

就是说。

अच्छे बच्चे भी अलग मेरे मन में बहुत आते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलनी तो सब चलते हैं। बात को हंसी आती है कि क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसको देख कर आप अलग पहले मन में आके ठोकर खाते हो, ये समझदारी है समझदारी। ये बहुत बहुत बहुत अलबेले मन का पश्चाताप बना है। अभी बड़ी बात नहीं लगती है, हाँ चलो, लेकिन बाप दादा सब देख रहे हैं, कितने अलग बेटे होते हैं, कितने और उनको नीचे जाने में फॉलो करते हैं। तो इस बाप दादा को बहुत रहम आता है, के पश्चाताप की कड़िया कितनी कठिन हो। इसलिए अल्लाह पहले बन की लहर को दूसरों को देखने की लहर को इस सब पुराने वर्ष में मन से विदय दो। जब तोरा उमंग उत्साह है ना, तो थोड़े समय

tutto attenzione. Sabson

0: Bakar samaj liya, soch liya, tum baap dada padhai puri karte the. Jab student ban chuke hain to phir tum padhai padhe, phir to samay pad karte. Lekin is alam pehle pan ko achhi tarah se vidhai do aur ko nahi de do. Baap ko dekho, Brahma baap.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसी

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैला वेस्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो बच्चा हसूर के हर्षरी मत हासर हसूर कर चलता है, सर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देव देविया और देवताए हो ना हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है। दृष्टि पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। ओ मां गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादिया स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे तीन दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे एक दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे दर्शन दे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक, समय एक और चारों ओर देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रखे। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का, सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके। आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, आचार करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्यूटी को रॉयलिटी, पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयलिटी के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा विशेषता कितनी रायल है। चित्र को देख करके ही सब खुश हो जाते, चित्रों द्वारा भी जन्म सिद्ध कार पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा। जनवरी मास को स्पेशल एक पवित्रता को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल व्यर्थ रूप बोल का जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रूप, संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आप जैसे पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र डबल पवित्रता प्राप्त।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

腰ばんじね。あがるばんの、あぶけあすこしちゃりちゃって、こいなこいばんせ、こしちゃりちゃって。Sadat

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Deci, Artan, Samaci, स्वरूप के

सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के साथ सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए आवश्यकता का अटे

सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप

bastard smacked me in. Ashtadev tapasadona aur bhakti mein ashtadev banna tino hi sanskar इष्ट तार्स भी नहीं चला।

0: 喂，
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में

にそっとしたコッカビネイジョーナ。カインバチー

Isn't it good?

नहीं करती तो खराब चीज है। तो अगर कोई आप

Ready?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब बच्चे सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है।
3: यूथ
2: और एजुकेशन,
3: चलो
2: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, मिला जुला
3: छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है। कई समझते हैं कि कर्म करते हुए, ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो वो लोग उमंग उत्साह आवे, तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते। ऐसा किताब निकालो और अपने जो भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह में जहाँ लाइब्रेरी हो वहाँ रखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृद्ध ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की, वो जो तेज आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं कोई नहीं सकता, कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे हो सकता, या करने की विधि नहीं आती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Kitchen.

సంతోషం మడిన స్వయం కోపి.

Shit.

जो संतुष्ट रहते हैं उस

Arslan, git.

money, but it's the

0: परेशान नहीं होता। अपरिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकता,
1: इस

0: Jan. अद्भुत।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: ईर्ष्या करती, इसलिए देखो कोर्ट में भी तराजू दिखाती है। निर्णय की निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एक अगर घंटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और चलो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां मन को चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी कार्य में लाए, एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jetty.

Dosta kísérti. Kiszi mi per kárki.

some seco.

Charles Santos.

Sabi. Vai mandarlo. Que sabi.

Mann, ich.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसी चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो आर्डर करो वो ही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं।

बच्चों का ही तो गायन है, हर कलप की है। तभी गायन है क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरी कहते हो वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो, मन में जो संकल्प करने जाओ जितना समय वो संकल्प करने जाओ, इस

0: जाओ योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Baby.

ちらと。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

chico.

to say.

Red Sun.

0: बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे,
1: जी।

Dios.

कुछ पर्पस और तुम्हारे सरकमस्टांस के बार-बार बहुत टेंशन में रहते हैं आजकल दुनिया में. खुश करने

Εξεπολτικά το φόβι.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रहम आता है, वो चिल्ला रही है, रैम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वजात्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है, तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी भरोसे होती है, वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पर आई, जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे आपने आप सभी बच्चों की भिन्न-भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सर्वशस्त्रधारी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश

संस्कार इमर्ज हो जाते हैं।

subtle.

बनाने को अपना बनाने से।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना से

0: Richards matado. Comaron que penase en Richards Hotel. Richards.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय पत्थर के रूप में उसी शक्ति और सफलता के याद रहते हैं। बार बार के साथ से गरम किया, इसलिए डबल लाइट रहता है। और अगर कोई विक्रम तो अभी नहीं होना है, वो तो टाइम अभी बीत गया। अगर अभी भी विक्रम भी होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है, लेकिन अभी भी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म व्यर्थ बोल व्यर्थ समत संपर्क योग व्यर्थ समत संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता। कई बच्चे बड़े चतुर है, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वो नहीं छोड़ती।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: रुकना अर्थात सोचना

Doch.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाती

अगर तुम से नहीं भगते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे देने की।

Jacoby, che saluto.

działanie.

Wasser.

तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय कि समय

Mrs. McGee.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब ठीक, आराम से रहे हुए हो, मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? है? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? ऐसे अच्छा नहीं, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? दिल में खुशी है ना, चेहरे पर आता है मुस्कुरा। मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही चाहते हैं, अब थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारंभ स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारब्ध वाले बनेंगे। हाँ तो

Empire.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राइट लो पाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करो, धन से मन से धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है, अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं। बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम बिजी रहे, ये भी होते हैं कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना क्या है? करना या ना करना की बात है, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इसे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब से होगा करें। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रायल रूप है, और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया, आपने चांस दे दिया
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब बाप ने अपना बनाया ब्रह्मांड जीवन दी, तो ब्रह्मांड जीवन का आप सबका वायदा क्या है? बोलने वाले बने, अब ये एक जन्म समृद्धि स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रही है, बचपन का वायदा याद है? सहज करके दिए, एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक

मुझसे कहा सब कुछ आपका है, धन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। आपने बाप को दे दी, दे दी है ना कि वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहती है, रो रियान करती है ना, तो कहती है मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बेनकोटी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बेनकोटी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना, सर्व आत्माओं के प्रति कार्य

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

Oh, damn.

जो करता मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रायल में बन और Peace.

0: Resista. Ab sabka kitna samarpan tamahin.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेला पन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

विश्वास।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों हिम्मत दे रही है कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ, मन का हाथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस मोटे रूप से

Eskilliste. Apasmee.

saber só mais tarde. आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनेंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ So

सबमें सिर्फ तीन शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना।

Son Galap Gobi. Srishth Bana Denga. Vani Me. Sleep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है। अभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। क्योंकि हर एक टीचर सेवा तो करते ही और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते हैं। जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, होते हैं चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है। अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना? तैयार हो? बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके मान तो है ही, नहीं तो नहीं तो कैसे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।
4: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना मंदिर पे जाते हैं, तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते। जन्म में भी

0: मास्टर सागर हो कि नहीं हो, हो ना कहो पहले मैं इसमें हे अर्जुन बनो ऐसा वायुमंडल बनाओ जो जो भी सामने आए वो कुछ न कुछ सनेले सहयोग ले
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah. दोनों को भी फानी और वत्सा संकल्प द्वारा परिवर्तन करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुन

Sipping Water.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Canına artan suyum kumahan banana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा अगर बच्चे को दीवार पुशारती be

del Quito a Elena. Rosa Bradwelle. Apaneco. Papito a Rakiek.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से अल्लाह पहला पन आ जाए।

0: Chase, attention to apna yan. Aap apna program banao. Apna program banao. Jisme बिजी रखो, अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का, चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन पर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, दो हाथ नहीं एक। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? सेवा में लगाते?

सेवा में लगाना।

so much nesse.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ruiz Banana.

Bom dia.

Hotel.

0: लंबा चलता है, बात आधी घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वो बात बार बार स्मृति में आती रहती। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहती है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा को आदत से मजबूर होती है ना। तो जब भी मेरा मेरा आवे ना, तो मेरा बाबा के खत्म कर दो, अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चे जो भी समा

Sama apa

0: Sunny. Bolanat Bab. Sachitil Bar. Bot Sej Rasi Ojan.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sick.

0: दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है, ये नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मनस से आप नहीं उठा रहे हैं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

कुर्सी कहती है, हम शिव वंशी

Sí.

So.

Всем. Sabiré, dulce.

0: escuchándome.
1: But I see it.

Questions.

जाऊंगी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Let's go.

विधि पूर्वक

0: Si sì.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को अभी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हैं, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं हैं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग की लास्ट का यही फ्रूट है, तो खा लो प्यार से।
2: तो एक कलयुग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक

सोचते हैं हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होना चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज कर अलबेलापन तो नहीं आता। हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती। अब दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट अटेंशन पूरा हो, ऐसे नहीं सोच।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करें? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो, इसके भी विधि बताते हैं। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास के वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। आप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

कुछ ना कुछ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

divertir.

Unbox.

इसको

0: इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी स्वरूप की अनुभूति में खोजे अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समय हुई रहती है उसकी शिकिल चलन सेवा कर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes. कुछ समस्याएं आती सारे दिन में चेक करो करा वनहार आत्मा बन करम करा रही हूं अच्छा अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तैयार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है? सब रिजल्ट लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना। मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज। क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Thank you. Yeah. की इच्छा का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उससे रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अटेंशन रखो दो बात का, एक सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से क्या है गैस का गुब्बारा बढ़ जाता।
2: Eyebrows.
1: इसीलिए माँ दादा उस नजर से आपको नहीं देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहता सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बर नहीं, लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ दिल चतुराई नहीं कर, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो को स्वमान की दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहता है, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रखे आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष पे नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष पे नहीं हो। Yeah. पापा, कहता है मेरा पापा और करता क्या, इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुरादासन करके देखो, दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग। अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ता।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चाहते

नजदीक

0: सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से इशारा दे रहा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कि सेवा

और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी

शक्ति द्वारा। टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं।

Esse é Samer.

अभ्यास चाहिए। इसका साधन है

de sal. Por ti llegué. Por si.

Attention.

चितने रिजल्ट चाहते हो उसे अतक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देश का अपमान, देश का मान फिर भी अलग चीज है, लेकिन देश का अपमान ये बहुत सूखम है। मेरा इसको ही देश का अपमान कहा जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Like बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सभी बच्चों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते हैं तो जैसे परिवर्तन तो नहीं ना, जो भी छोटी मोटी बात है ना, वो परिवर्तन आप ही कर लो, कहना नहीं पड़े। समझदार विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना
2: विश्व परिवर्तन।

0: खुशखबरी सुनेंगे ना। सुनेंगे सुनेंगे, इसमें याद रहो। अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देते हैं, सभी को नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप को भी समझाने लगते हैं, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अवित हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चलना है, तो हम ऐसा कर और आप साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ एक चाहिए, योग लगता नहीं है तो क्या करें। उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखना चाहिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, है डॉक्टर, उल्टी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए, डॉक्टर भी कहता है उल्टी करनी चाहिए। अच्छा ये तो हुआ था नकल डॉक्टर, और आप सभी जो है वो मन के डॉक्टर हो, धन्यवाद दे तो अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ तो अगर मन में कोई उलझन हो तो क्या करे, कहाँ उल्टी करे, बाबा के सामने उल्टी करे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लव टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं बड़ा होता। हर एक विंग को सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए। नस्तिक आते जाए रखते रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा? सुना?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, शुभ भावना शुभ कामना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा बदल नहीं सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आपकी शुभ चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं। हाँ जी,
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: School।

morning, teacher. Genesis.
no tuara, siapa yo tuara, kara rei.

0: ये बर्दकियता करनी है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Está

patata. Tot párat kifél a szakvikibé. Bot paté, szunaté. Csófíté, csókó, bilkul patáné. Kanés kiavoté, anumán kiavoté. Ramen kia, bhagvat kia. Bhakti kya, kuch pata nahi, lekin kalab pehle ke hone karan sab baatein catch kar lete, to catching power achhi. समझ जाते क्योंकि एक विशेषता है कि जो सुनते हैं उसका अनुभव करते हैं, सिर्फ सुनने पर नहीं चलते. चाहे शांति का अनुभव, चाहे खुशी का अनुभव, चाहे निस्वार्थ प्यार का अनुभव, कोई न कोई अनुभव परिवर्तन कर देता. एक और विशेषता भी है, कभी भी कोई कमजोरी छिपाते नहीं, साफ दिल है, इसलिए मेकअप कर लेते.

0: Kifetesi. Harsalatı. Bharat wale kabhi miss bhi kar sakte hain. Lekin ye nahi karte. Aana hi hai. Kya bhi kare. Dekho, Russia wale bhi dekho. Paisa kam hai. लेकिन आर्थिक रूप बहुत बड़ी तो विदेशों की हिम्मत इसलिए हर एक विदेशी को बाप दादा विशेष याद प्यार और मुबारक डबल विदेशों की कमाल बाप दादा देते रहते हैं और वापस शिवा के।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। सर नहीं, सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सर नहीं, याद में लव सीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई पुशारत नहीं करो सनी के सागर में, समा जाओ। कभी कभी बच्चे सनी के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल के आते। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। करा अभी अभी। बाहर निकलते और बातों में लग जाते, बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल। समाते रहो परिवर्तन किया। अपने जन्म के आद का समय अनुभव याद है ना, ज्ञान और योद्धों मिला, लेकिन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चौक

भी समझती है।

चुते हैं।

0: जो बाप से शक्तियां मिली है उस शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Merci.

0: பரம்தாம்.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।